0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। This is the Gaana Indie Top 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गानों में दो नई एंट्रीज हैं। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंट डाउन की गाना नंबर 10 के साथ। गाने का नाम है मूव बॉडी, ज़ारा खान स्केल्स का गाना। चार हफ्तों से है ये बरकरार। पिछले हफ्ते से तीन पोजिशन नीचे ड्रॉप होके मूव बॉडी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद हर्ष नुसी की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है साड़ी सुन। आठ हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके साड़ी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द होल काउंटडाउन एंड अ कैसेट क्लासिक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय। नंबर 10।

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, सुनेगी कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सारे कॉम्बिनेशंस की वजह से 8 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ अभी के अभी, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक ऐसे आर्टिस्ट की आवाज है जिसके साथ एक पूरी जनरेशन ने प्यार करना सीखा है। सोच के देखो, कॉलेज का पहला क्रश या वो एक तरफा प्यार, गाड़ी में बैठे रात की ड्राइव्स, एक पूरी जनरेशन को इन्होंने प्यार करना सिखाया। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली शान। मैं शान का नाम भी ऐसे मुस्कुराए बिना नहीं ले पाती हूँ, बिकॉज उनकी गानों में, उनकी आवाज में हमें उनकी मुस्कुराहट सुनाई देती है। पूरे 3 दशक हो चुके हैं एंड शान इज स्टिल गिविंग अस द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम। चाहे वो फिल्मों के गाने हो या नॉन फिल्म गाने हो, चांद सिफारिश हो या हे शोना, अलग अलग प्यार के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं शान की आवाज रही है। नाउ काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स अ नया नवेला गाना, उसमें उनके साथ है दीदार कौर, एंड ये दोनों का पहला कोलैबोरेशन है। उदीपन शर्मा का म्यूजिक है, श्लोक लाख के लिरिक्स, एंड इस गाने में वो शान के प्यार वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, दीदार कौर एंड शान की आवाज में। गाने का नाम है दिलदारा, अ नई नवेली एंट्री। इस गाने ने डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।
1: गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है।

0: संजू राठौड़ की आवाज, गाने का नाम है बैंगल्स। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले मेरा फेवरेट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन, फरक की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम तारे, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी, इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। संजू राठौड़ की आवाज ऐसी है, सुनते ही पता चल जाता है इट्स हिज सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे एक नई नवेली एंट्री हुई शान का, दीदार कौर की आवाज में हमने सुना दिलदारा ऑन गाना नंबर 8। इनफैक्ट शान की आवाज भी वही है, पहले नोट से यू नो इट्स हिम। चाहे वो सिंगर की आवाज हो या कुछ गानों का इंट्रो म्यूजिक,

वो गाने जो एकदम याद आ जाते हैं ना, they've got that stickiness factor. आज के शो में जो मैं कैसेट क्लासिक में आपके लिए गाना बजाने वाली हूँ, that is our 90s and 2000s का iconic pick. उस गाने का मैं इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ. @RJ कनेका पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने का है.

0: एट आरजे करंग ऑन इंस्टाग्राम पर बताओ मुझे गाना कौन सा है। ये पूरा गाना शो पर आगे हम आपके लिए प्ले करेंगे। बट टॉकिंग अबाउट टेक अवे फैक्टर्स, ऐसी आवाज, ऐसा म्यूजिक जिसे सुनते ही हम आर्टिस्ट को एकदम रिकग्नाइज कर जाते हैं, उसमें से एक आवाज है रेखा भारद्वाज की। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो उन्हीं का गाना है। शायद आप गाना पहली बार सुने लेकिन सुनकर लगेगा कि इस गाने को तो आप बरसों से जानते हैं। दैट मैजिक इज रेखा भारद्वाज। ये गाना मुसाफिर कैफे नाम की सीरीज का है, जो एक नेटफ्लिक्स सीरीज है। कंटेम्प्रेरी लव स्टोरी, यंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम उसके बारे में है, लेकिन प्यार को डेफिनेशन दे दिया रेखा भारद्वाज की आवाज। क्योंकि रेखा भारद्वाज की आवाज में प्यार गहरा लगता है, सदियों पुराना लगता है। उनकी आवाज में वो तजुर्बा है, एक याद है जिसको सुन के लगता है कि ब्रो ये दर्द तो पहले भी झेला है। एंड मुसाफिर कैफे जो शो है वो एक बुक पे बेस्ड है, सो ऑलरेडी उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। द सीरीज इज ऑल अबाउट लव। ये जो गाना है ये भी एक नई नवेली एंट्री है। इस गाने का जो दिल है ना वो बहुत खूबसूरत है और बहुत दुखी भी है। द सॉन्ग इज अबाउट राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, बट रेखा भारद्वाज की आवाज में इट विल ऑल साउंड मैजिकल। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। नई नवेली एंट्री ऑन द काउंट डाउन, राघव कौशिक एंड रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है दरमिया। इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 5। यू ऑल लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 5।

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: अनीश सर का हृदय की आवाज में गाने का नाम है उड़ी उड़ी। 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, follow karo. Follow karna bilkul free hai. Handle is @RJ Kanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Independent music basically ek artist ko wo mauka deta hai ki tum jo feel karte ho, jo mehsoos karte ho, jo kahani batana chahte ho, apne music ke zariye wo batao. एंड स्पेस में कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ट्रूली म्यूजिक में मीनिंग ढूंढा है, एंड वन ऑफ दोज आर्टिस्ट इज इंडियन ओशन, लेजेंडरी आइकॉनिक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। व्हाट अ बैंड, आई स्वेयर हर किसी को इंडियन ओशन का लाइव शो देखना चाहिए, आपको गूज बम्स आ जाएंगे। दे ट्रूली डिफाइन द इंडिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट म्यूजिक बिकॉज वो कल्चरल पे कॉमेंट्री करते हैं, अपने ओपिनियन देने से कतराते नहीं है। उनका म्यूजिक कहीं ना कहीं हमें इंटरनली रिफ्लेक्ट करने पे मजबूर कर देता है। आज हम इंडियन ओशन के ये गाने को स्पॉटलाइट देने वाले हैं। ये ऐसा गाना है जो आपको रुकने पे मजबूर कर देता है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी इंसान से मिलते हैं, वे आर वेरी क्विक टू जज। नाम से कोई ना कोई लेबल लगा देते हैं कि ये इस तरफ का है, वो उस तरफ का है, ये अपना है, वो पराया है। एक बार हमने ये करना शुरू कर दिया ना बॉस, हमको सिर्फ वही दिखता है। और ये गाना जो है वहीं पे हमारी नब्स पकड़ लेता है कि ये क्या लगा रखा है उस नाम के पीछे, उस लेवल के नीचे। सामने वाला बंदा बिल्कुल मेरे और तुम्हारे जैसा ही है। That's the beauty of Indian Ocean. उनके गाने आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, उनके गाने सवाल भी उठाते हैं और आईना भी दिखाते हैं। That's why their voice matters and they are truly one of those artists जो music and meaning को साथ में लेके चलते हैं। तो अपने radio sets की volume बढ़ा लीजिए। जिस गाने की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है रुक जा रे बंदे। तो थोड़ा रुक कर इस गाने को सुनो, इंडियन ओशन का रुक जा रे बंदे ऑन आर स्पॉटलाइट दिस वीक। बंदी का नाम है RJ Kanika। Enjoy।

इस गाने में ना वो बात है कि आसपास का सारा शोर एकदम के लिए रुक जाता है और आप इस गाने को सुनने के लिए, महसूस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इंडियन ओशन द बैंड का दैट वॉज बंदे ऑन आर स्पेशल स्पॉटलाइट दिस वीक। @RJKanika और इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी ऐसा गाना जो आपको रुकने पर मजबूर कर देता है मुझे उस गाने के बारे में बताओ, एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। नूर खान मधुर एक्सो का आरजू इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। उसके बाद मिट्टा रॉयर की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। 20 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार शीशा इज ऑन गाना नंबर 2। यू ऑल लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 2।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची पर शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का काउंटडाउन, जिसमें दो नई एंट्रीज हैं। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

एंड जो गाना हम आज फीचर करने वाले हैं इज पहली बार बहुत सारे नौजवान अपने घर छोड़ के निकल रहे थे, कोई नए कॉलेज के लिए, नए शहर के लिए, पहली नौकरी, नया फोन जिसपे एसटीडी के पैसे बचाने के लिए मिस कॉल दिए जाते थे। उस पूरे दौर का जो दिल था ना, वो कहीं ना कहीं इस गाने में है, तन्हा दिल। क्योंकि ये तन्हाई किसी ब्रेकअप वाली तन्हाई के बारे में नहीं है, ये घर से दूर एक नए शहर में कमरे में कोई अकेला बैठा है, घर की याद, माँ के हाथ के खाने का स्वाद, वो बचपन का दोस्त जो सब पीछे छूट गया। पर दिस सॉन्ग कैप्चर्स अ यूनिवर्सल फीलिंग, राइट? तन्हा दिल, तन्हा सफर। ना यूट्यूब था, ना इंस्टाग्राम था, लेकिन ये गाना और बहुत सारी लैंग्वेजेस में अडेप्ट हुआ था। एंड आज 2026 में भी ये फीलिंग इतनी रेलिवेंट है, बिकॉज कोई ना कोई आज भी अपना घर छोड़ के एक नए शहर में है, थोड़ा लॉस्ट फील कर रहा है, मे बी अपनी फैमिली को मिस कर रहा है, बस कैसेट की जगह हाथ में फोन है, बट फीलिंग तो वही वाली है। और शान की आवाज में दिस सॉन्ग कैप्चर्स इट ऑल, तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। कैसेट क्लासिक विद दिस वीक राम संपत की कॉम्पोजिशन, शान की आवाज, तन्हा दिल इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

शान की आवाज, राम संपत की कॉम्पोजिशन, दैट वॉज तन्हा दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। गाना भले पुराना हो, फीलिंग वही है, चाहे आप घर से दूर हो या ना हो, ये गाना सबके लिए है। एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी 90s एंड 2000s का वो पॉप सॉन्ग जो आज भी आपको बहुत पसंद है हमारे साथ शेयर करो। मैं और मेरा साउंड प्रोड्यूसर अशकाय, हम दोनों आपके कैसेट क्लासिक के रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, which is the numero uno song of the week, यानी इस हफ्ते का गाना नंबर एक। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बन जा रहे द आर्टिस्ट का गाना, उन्हीं की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैरन। दिस हरियाणवी पॉप सॉन्ग इज येट अगेन ऑन गाना नंबर एक। यू आर लिस्टिंग टू गाना इन द टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 1।

Michi. It's hot.

0: makes it.
1: Happy Independence Day, everybody. Well, independence का मतलब सिर्फ आजादी मिलना नहीं, आजादी का मतलब है अपनी choice की responsibility लेना. क्योंकि freedom में free है, responsibility बिल्कुल free नहीं. Happy Independence Day once again, and with that I start today's Club Mirchi Independence Day special with DJ Richard and Mirchi Oyontika. Jai ho.

0: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।
1: नौजवानों, बात बात

इसका मतलब है अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना, लेकिन मम्मी के सामने मैं इंडिपेंडेंट हूँ बोलने से पहले उनका ही वाईफाई पासवर्ड याद से पूछ लेना, ठीक है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लव मी जी।

हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए।

राइट समझेंगे इंडिपेंडेंस इनकम्प्लीट रहेगी है कि नहीं। क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्डन मिर्ची और योंतिका के साथ, वेलकम बैक पीपल। थोड़ा ड्यूटी भी और थोड़ा डिग्निटी भी जरूरी है, थोड़ा दूसरों के लिए स्पेस भी बनाओ और नाचो हमारे साथ जब तलक तू बोले तब तलक।

सिर्फ एक ही गुजारिश है, इंडिपेंडेंट होने से अपनी आवाज को आप सुन सकते हो, लेकिन इतना भी इंडिपेंडेंट मत बनो कि दूसरों की आवाज को ही म्यूट पे डाल दो। क्लब मिर्ची जारी है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका के साथ। आप चाहे या ना चाहे, हम हैं आपके साथ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।

This is your official Disco 82 on Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyondika. Freedom का एक underrated benefit तो यही है कि अपना music खुद choose करो यार. Club Mirchi पे आप कर सकते हो हमारे साथ. DJ Richard official को follow करो and put out requests if you want.

देश सिर्फ मैप पे एक शेप है, ये वो जगह है जहाँ हमारे चॉइसेस का इम्पैक्ट किसी और की लाइफ पे पड़ता है। सोचो फिर आजादी सेलिब्रेट करो। आज तो तन्हा नहीं हो आप। क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो के साथ।

वेलकम बैक पीपल, क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका के साथ। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इसका मतलब हर बात पे डिसएग्री करना नहीं होता, कभी कभी अपनी फेवरेट ओपिनियन को भी बोलना पड़ता है, भाई तू गलत है। दैट्स फ्रीडम टू, लेट्स एक्सरसाइज दैट, लेट्स ऑलवेज गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, दिलजीत दोसांझ इन द हाउस लेडीज एंड जेंटलमैन।

वेलकम बैक वंस अगेन। इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा मैजिक, आप अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हो। बस एक डिस्क्लेमर है, एक्सक्यूजेस का पेन यूज करके बेस्ट सेलर नहीं बनना है, ठीक है? और जादू तो मिलता ही रहेगा आपको क्लब मिर्ची पे। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो थिका जो है आपके साथ।

मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ। देश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिर्फ बॉर्डर्स नहीं, बिहेवियर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यूट तोड़ना, रूल्स तोड़ना, प्रॉमिस तोड़ना, ये इंडिपेंडेंस के प्रीमियम फीचर्स तो नहीं हो सकते। चलो अभी आवन जावन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं।

वेलकम बैक, डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयोंतिका आपके साथ। अब इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स भी। अपनी कहानी खुद लिखो, लेकिन दूसरों की कहानी में अनवांटेड विलेन मत बनो। तेरी मेरी कहानी जारी रहेगी ना दोस्त, क्लब मिर्ची पे।

मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल दिखा। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है अपनी चॉइसेस पे खुद खड़े रहना। फैशन हो, करियर हो, लव हो, दुनिया एडवाइस देगी, बिल आपको ही भरना है। ऑन दैट नोट चलो धुरंधर से सुनते हैं आरी आरी।

इम्पोर्टेंट रूल है, जो दिल करे करो, बस दूसरों का दिल तोड़ना उस कैटेगरी में नहीं आता। इश्क जलाकर आगे बढ़ेंगे क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, और इस सोनी दे नखरे आपको प्यारे ही लगेंगे।

sexy, don't you?

मैं से हम तक जाना भी है इंडिपेंडेंस का मतलब. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और यूं देखा, बिकॉज़ एक कंट्री तब स्ट्रांग होती है जब इंडिविजुअल ब्रिलियंस टीम वर्क में कन्वर्ट हो जाए. जैसे अल्फाबेट में सारे लेटर्स जरूरी है, ए बी सी डी टू जेड.

वेलकम बैक वंस अगेन पीपल, क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी खुद को परमिशन देनी पड़ती है। इंडिपेंडेंट हो, अपनी खुशी के लिए किसी अप्रूवल कमेटी का वेट मत करो यार। चलो चलो, चलो।

रिपीट मत करो जो गलती कर चुके हो, उसको ट्रेडिशन मत बना। अपग्रेड योरसेल्फ एंड बैड हैबिट्स के लिए नो एंट्री। क्लब मिर्ची मिर्ची जरूर चटन मिर्ची और यौन टिका फिलहाल आपके लिए सेकंड हैंड टूटी फूटी जवानी।

अपना हक मांगना इंडिपेंडेंस है, लेकिन दूसरे का हक रिस्पेक्ट करना उसे मैच्योरिटी बोलते हैं। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका, राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स गो।

चौड़न मिर्ची और यौंदिका। इंडिपेंडेंट सिटीजंस के ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, लेकिन ड्रीम्स के साथ अलार्म भी लगाओ, बिकॉज फ्रीडम विदाउट एक्शन इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल डे ड्रीम। गॉट इट?

my socials too. My name is Ayantika, AYANTIKA. यार ना मिले तो मुझे ही अपना यार बना लो.

York Blues with Club Med.

आजाद है तो सेलिब्रेट भी फुल वॉल्यूम पे ही करेंगे, बस नेबर्स को याद दिला दे उनके भी फंडामेंटल राइट्स है, स्पेशली स्लीप। सो माइंड दैट वॉल्यूम, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो दिखा। टाइम टू गो जेंटलमैन।

अपने सपने चुराने मत देना और किसी और के सपने का क्रेडिट भी मत चुरा लेना। इंडिपेंडेंट रहो पर ओरिजिनल रहो। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल।

Welcome back, Club Mirchi, with DJ Richard and Mirchi Oyontik. And right now it's time to listen to my favorite track. एक ऐसा गाना जो मुझे याद दिलाता है कि टॉक्सिसिटी को टॉलरेट करना लॉयल्टी नहीं, कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नेशनल ड्यूटी जैसी इंपॉर्टेंट होती है. जहरीली रातें फॉर यू ऑन क्लब मिर्ची पीपल.

समझा करो टुडेज इंडिपेंडेंस डे थोड़ा लाउड म्यूजिक तो बनता है। इंडिपेंडेंस डे पे यंग इंडिया को एक विश, सिर्फ जवान नहीं जागरूक भी रहो। एनर्जी तो है ही, यू समथिंग दैट मेक्स टुमारो बेटर। आई एम गोना फॉलो दैट फ्रॉम टुडे। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिका।

देश से प्यार करना इजी है, एक दिन फ्लैग लगाओ, फोटो लो, स्टेटस लगाओ। रियल लव, रोज अपने आसपास को थोड़ा बेटर छोड़ना देन यू फाउंड इट। माँ तुझे सलाम। वेलकम टू क्लब मिर्ची।

रखिएगा। जब कंधे से कंधा मिलता है तब एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका। हम है सुल्तान इस देश के।

जर्ड एंड मिर्ची ओयो उनके गार एक बात गौर से सुनिए। इंडिपेंडेंट सिटीजन का यूनिफॉर्म नहीं होता, वो डॉक्टर भी हो सकता है, ड्राइवर भी, स्टूडेंट भी, होममेकर भी। कॉमन क्या है? सिर्फ एक चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी बात को बार बार दोहराएंगे

रन टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, बट रिमेंबर रेस सिर्फ जीतने के लिए नहीं, किसी और को गिरने से बचाने को भी विक्ट्री ही बोलते हैं। वेव दैट फ्लैग ऑफ ब्रदरहुड ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen.

इंडिया को जोड़ने के लिए फेविकॉल नहीं चाहिए, बस थोड़ा टॉलरेंस, थोड़ी ह्यूमर और एक दूसरे को स्पेस देने की आदत बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग रखती है कि नहीं। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल टिका।

करने से पहले सोचो, क्राउड के साथ चलना इजी है, अपने दिमाग के साथ रखना ही इंडिपेंडेंस है। तभी तो सब हमसे बच के रहेंगे। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल टिका।

के सिटीजंस हैं हमारे देश में। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो उनका, लेकिन फ्रीडम का मतलब है अपने वर्जन के 100 तरीके डिस्कवर करना। किसी और के टेम्पलेट में फिट होने की जरूरत नहीं। यू डू यू डूड, कीप दैट इंडिविजुअलिटी। इसके साथ क्या खूब लगती हो।

y da gama de

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर

Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Free.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
1: Attempt to go regional and better than our right.

0: views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain the Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
1: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो इन द मॉर्निंग्स व्हेन यू वेक अप यू नो मूड नहीं होता है काम करने के लिए बट अगर फेस्टिवल डे होगा कोई उत्सव होगा देन वी वेक अप अर्ली बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि घर में बहुत एक्साइटमेंट होता है नए कपड़े होते हैं खाना होता है प्लान्स होते हैं पूजा पाठ होगा कुछ तो एक्टिविटी होगी गेस्ट आएंगे हम कहीं जाएंगे जो रूटीन होता है वो टूट जाता है आई रियली लव फेस्टिवल्स especially Indian festivals because हर फेस्टिवल में अलग अलग प्रकार का खाना बनता है एंड आई थिंक दैट इज वॉट रियली एक्साइट्स मी और नया कॉन्सेप्ट होता है यू नो दिवाली के टाइम हम लक्ष्मी के बारे में सोचते हैं दशहरे के टाइम हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सोचते हैं कंप्यूटर की पूजा करते हैं जब होली होती है तो रंग के बारे में सोचते हैं सो मेनी डिफरेंट आइडियाज कीप कमिंग सो जब उत्सव होता है तो उत्सव इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ और भारत उत्सवों का देश है यू नो इतने उत्सव होते हैं रोज रोज कोई ना कोई उत्सव होता है और अलग अलग जगह में अलग अलग उत्सव होते हैं उत्तर भारत में दक्षिण भारत में इतने उत्सव देवी देवताओं के उत्सव होते हैं पेड़ पौधों को लेके उत्सव होता है पशुओं को लेके उत्सव होता है पितरों को मतलब एंसेस्टर्स को लेके भी उत्सव होता है इतने उत्सव होते हैं यू नो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू नो जैसे बाइबल में कहते हैं कि यू नो God created the world in 6 days. On the 7th day, He rested. इसलिए हर हफ्ता एक holiday होता है. In amongst Muslims वो Friday होगा, Jewish लोगों में वो Saturday होता है, Christians में वो Sunday होता है. लेकिन ऐसा weekly holiday का concept Indian religions में नहीं है, Buddhism, Jainism and Hinduism में. यहाँ पे उत्सव कोई भी दिन मनाया जाता है, based on either some event that happened या कोई season variation या you know basically the climate has changed. तो राजा उत्सव डिक्लेयर करता था और हॉलिडे होता था तो देयर इज नो रिदमिक हॉलिडे इट इज इररेगुलर कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है एक पूरा सीजन होता है जब आप ज्यादा फेस्टिवल्स नहीं करते हो जिसको चातुर्मास कहते हैं रेनी सीजन का सो आई थिंक फेस्टिवल्स आर अ ग्रेट थिंग टू डिस्कस नॉट अ स्पेसिफिक उत्सव बट जनरली उत्सव का मतलब क्या है वॉट डज इट मीन वॉट इज इट्स सिग्निफिकेंस क्यों करते हैं हम लोग वॉट इज इट्स वैल्यू इन आर लाइव सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो
0: मदन उत्सव और वैलेंटाइन्स डे में क्या है सिमिलैरिटी बताएंगे देवदत्त कीप लिसनिंग

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम श्योर यू आर थिंकिंग व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल, एंड फेस्टिवल्स आर देयर ऑल द टाइम। कल भी फेस्टिवल्स थे, आज भी फेस्टिवल्स हैं। पहले जमाने में भी फेस्टिवल्स होते थे, अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे, और आज भी नए नए फेस्टिवल्स होते हैं, उनका रूप बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जमाने अगर आप कालिदास की कविताएं पढ़ें तो वहां पे मदनोत्सव होता था। मदन मतलब कामदेव, गॉड ऑफ लव, और वी यूज टू सेलिब्रेट द गॉड ऑफ लव। तो मदनोत्सव होता था वसंत उत्सव में, इन स्प्रिंग टाइम, और गणिकाएं नाचती थी। ऑल द गर्ल्स वर इनवाइटेड टू द किंग्स गार्डन, राजा के जो गार्डन था वहां पे उनको बुलाया जाता था, वहां पे खाना पकता था। दे वुड सिंग एंड डांस एंड प्ले ऑन स्विंग्स, और मजा करते थे, कामदेव की पूजा करते थे कि हमारी जिंदगी में भी प्रेम आ जाए, लव आ जाए। सो इट वाज अ फेस्टिवल ऑफ लव। आजकल हम मदनोत्सव को नहीं मानते हैं, लेकिन वी टॉक अबाउट वैलेंटाइंस डे। ऑफ कोर्स सम पीपल गेट वेरी एंग्री, वैलेंटाइंस डे पाश्चात्य है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, एंड आई कीप सेइंग अरे ये मॉडर्न वर्जन ऑफ मदनोत्सव ही है, कामदेव की पूजा है। यू नो होली इज ऑल्सो सेट टू बी रिलेटेड टू मदनोत्सव, वसंतोत्सव। अगर आप जितने भी ओल्ड काव्य पढ़े, संस्कृत काव्य, वहां पे मदनोत्सव के बारे में बहुत बताया गया है। फेस्टिवल ऑफ लव, वी सेलिब्रेट लव, वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट लव, कल भी आज भी। आई थिंक एवरी डे शुड बी मदनोत्सव, नॉट जस्ट ऑन सम डेज। सो एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट लव एंड वी शुड हैव अ गुड टाइम, बट इफ यू कांट, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर सेलिब्रेट लव। थिंक अबाउट द पर्सन हु लव्स यू एंड होप दैट यू आर लव्ड इक्वली। ऐसी ही बातें हम डिस्कस करेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो, जहां पे हम वेद पुराण आख्यानों के बारे में डिस्कस करते हैं और उनका रेलेवेंस इन आवर डे टू डे लाइफ ढूंढते हैं।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: राम कृष्ण के जन्मदिन तो मनाए जाते हैं, पर शिव का क्यों नहीं, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: तो आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। हर देवी देवता का एक उत्सव होता है और उत्सव के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। सो स्टोरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन उत्सव। जैसे जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं लोग, तो हम कहते हैं कि जीसस का जन्म हुआ था, सो दैट इज व्हाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड। जब ईस्टर की बात होती है तो लोग कहते हैं कि जीसस रेजरेक्टेड हिमसेल्फ। यू नो, रमजान इज अ फेस्टिविटी व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द कुरान वाज बीइंग नरेटेड सो फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो मंथ को रमजान कहते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी, समहाउ स्टोरी इज रिलेटेड टू ए फेस्टिवल। कृष्ण जन्म की एक उत्सव होती है, राम जन्म का एक उत्सव होता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा शिव का जन्म के बारे में कोई फेस्टिवल नहीं होता या दुर्गा देवी के जन्म के बारे में, बिकॉज ये स्वयंभू है, ये अनंत है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट। उनका कभी जन्म नहीं हुआ है, उनका मरण नहीं हुआ है, दे वर नेवर बॉर्न, दे नेवर डाई, वो अमर हैं, दे आर ऑलवेज देयर। तो वी विल नेवर टॉक अबाउट शिवा बींग बॉर्न, वी विल नेवर टॉक अबाउट देवी बींग बॉर्न और विष्णु बींग बॉर्न, बट वी विल टॉक अबाउट राम का जन्म के बारे में, कृष्ण के जन्म के बारे में। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि देखो कैसे कहानियों के माध्यम से एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। ऑफकोर्स शिव की पूजा होती है, शिवरात्रि होता है, शिवरात्रि फेस्टिवल होता है, तो ये फेस्टिवल किसके लिए होता है? कहते हैं कि उस दिन शिव जी की शादी हुई थी, दैट इज वाई शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू हिज मैरिज, नॉट टू हिज बर्थ और एनीथिंग। सो अलग अलग स्टोरीज होते हैं। जब हम उत्सवों के बारे में बात करते हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस स्टोरीज विद आवर चिल्ड्रन, विद आवर फ्रेंड्स, कि आज ये फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स आर नॉट ऑलवेज रिलीजियस, देयर कैन बी आल्सो सेक्युलर फेस्टिवल्स। जैसे हार्वेस्ट टाइम में जब हार्वेस्ट होता है, तो जैसे लोहड़ी होती है, मकर संक्रांति होता है, दीज आर नॉट रियली रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल साइकिल्स, क्रॉप साइकिल्स, हार्वेस्ट टाइम, सोइंग द सीड। तो लोग फेस्टिवल्स मनाते थे। जब टैक्स कलेक्शन खत्म हो जाता है तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स, नॉट एवरीथिंग इज रिलीजियस। जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, देयर आर रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर पॉलिटिकल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स रिलेटेड टू सेक्युलर आइडियाज लाइक नेशन स्टेट। बर्थडेज आर ऑल्सो नॉट रिलीजियस फेस्टिवल, बट दे आर फेस्टिवल्स। सो ऑन द बर्थडे यू आर सेलिब्रेटेड बाय योर फ्रेंड्स, सो दैट इज ऑल्सो ए उत्सव। ऐसे ही बातें अबाउट फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स एंड सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन मिर्ची, द देवदत्त पटनायक शो।
2: आज फेस्टिवल्स में बाजार हैं या बाजार में फेस्टिवल्स, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: हमेशा अध्यात्म से शुरू होता है या एग्रीकल्चरल फेस्टिवल से शुरू होता है, कोई इवेंट से शुरू होता है, धीरे धीरे धीरे बाजार उसमें आ जाता है, मार्केट बिकम्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज ज्यादातर क्या खाना मिलेगा, क्या गिफ्ट्स मिलेंगे, क्या पार्टी करेंगे, ये फोकस हो जाता है. ऑल फेस्टिवल्स हैव एन इकोनॉमिक बेसिस. सो फेस्टिवल का पर्पस इज टू स्पेंड मनी एंड क्रिएट एक्सचेंज. आप देखेंगे जहाँ पे तीर्थ यात्रा होता है वहाँ पे मेले भी होते हैं. तीर्थ यात्रा, बाजार और मेला का बहुत क्लोज संबंध है. तो पूजा पाठ के साथ बाजार हमेशा साथ में रहेगा. मंदिरों के बाहर बाजार होता है, चर्च के बाहर बाजार होता है, लोग जब मस्जिद जाते हैं तो बगल में आप देखेंगे फूड स्टॉल्स होंगे क्योंकि फैमिली जाती है वहां पे. सो इट इज एन इकोनॉमिक स्पेस, सो वी शुड नॉट रिजेंट इट. ये होता है, इट्स ओके. अभी देखिए ना, जैसे क्रिसमस में ज्यादातर लोग जीसस क्राइस्ट की बात नहीं करते, सेंटा क्लॉज के बारे में ज्यादा बात करते हैं. सेंटा क्लॉज तो कंप्लीटली कमर्शियल है, उसके अध्यात्म ईसाई धर्म के साथ कोई लेना देना है ही नहीं. गिफ्ट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं हम लोग. थैंक्स गिविंग डे के बारे में हम ज्यादातर टर्की के बारे में लोग बात करते हैं. अमेरिका में लोग नहीं बात करते कि वो थैंक्स गिविंग है क्या, क्या इतिहास था. सो दिस इज एवरीवेयर, दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना. और ऑफकोर्स आजकल जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, इज बिकम सो पावरफुल एंड मनी इज बिकम सो पावरफुल दैट वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग बियॉन्ड मनी. वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग. शादी भी संस्कार नहीं रहे, अभी तो थिएटर बन गया है, नाच गाने का थिएटर बन गया है, वेयर हस्बैंड वाइफ इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड आर फोकसिंग ऑन डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गेस्ट्स. होता है, समय के साथ सब कुछ बदलता है. वी आर इन अ डिफरेंट टाइम, मे बी वी हैव अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, बट धीरे धीरे धीरे करके जब लाइफ का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, जब हम अर्थ ढूंढने लगते हैं अपने जीवन में, तो हम सेलिब्रेशंस को छोड़ के उनके पीछे रहस्य जो है उसे ढूंढते हैं. यू कैन टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस एंड शेयर द आइडियाज अबाउट फेस्टिवल जो हम देवदत्त पटनायक शो में डिस्कस करते रहते हैं ऑन मिर्ची, एंड एनकरेज देम टू लिसन टू द शो, सो दिल रियलाइज कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट सेलिब्रेशंस, इट इज ऑल्सो अबाउट थिंकिंग, विचार, भाव, रस, बहुत चीज होते हैं फेस्टिवल्स में, नॉट जस्ट मनी.
1: इट वॉज रियली हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू हितेश.
2: On Radio Mirchi.
3: The Devdutt Patnaik Show.
4: क्यों बदलती हैं फेस्टिवल्स की डेट्स? क्या है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष? बताएंगे देवदत्त. Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
1: जहाँ पे आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फन फ्रॉलिक फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो,
2: द देवदत्त पटनायक शो
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तो ज्यादातर अगर आप मंदिर में जाएं तो मंदिरों में रोज एक ना एक फेस्टिवल होता है। बनारस में एक फेमस कहावत है कि 7 दिन में 9 त्योहार होते हैं। सो यू नो वी हैव दिस विच इज द कल्चर ऑफ फेस्टिवल्स। सो मोस्ट फेस्टिवल्स हैपन ऑन द वैक्सिंग मून टाइम। वेरी फ्यू फेस्टिवल टेक प्लेस इन द कृष्ण पक्ष और द वेनिंग मून, जब द मून इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, अमावास की तरफ जाते हैं। सम ऑफ दोस फेस्टिवल्स आर जैसे कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्म का फेस्टिवल इज इन कृष्ण पक्ष, महाशिवरात्रि इज इन कृष्ण पक्ष, और इनफैक्ट हर महीने एक शिवरात्रि होता है, जस्ट बिफोर अमावास के दिन शिवरात्रि होता है। महाशिवरात्रि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिवरात्रि, लेकिन हर महीने एक शिवरात्रि होता है। ट्रेडिशनली शुक्ल पक्ष को ज्यादा वैल्यू दिया गया था और कृष्ण पक्ष को कम वैल्यू दिया जाता है। और वन ऑफ द स्टोरीज इज दैट देवासुर में जब संग्राम हुआ था तो ब्रह्मा ने कहा कि जो शुक्ल पक्ष होगा वो देवताओं के साथ जुड़ा होगा और जो कृष्ण पक्ष होगा वो असुरों के साथ जुड़ा होगा। जब उत्तरायण होता है तो वी मूव फ्रॉम स्प्रिंग टू समर टूवर्ड्स रेन्स, दक्षिणायण में वी मूव फ्रॉम द रेनी सीजन टूवर्ड्स विंटर टूवर्ड्स स्प्रिंग। तो वहां पे भी डिविजन हो गया था कि देवता उत्तरायण में बैठते हैं और असुर दक्षिणायण में बैठते हैं। ऐसे द वर्ल्ड इज बीइंग चर्न्ड, एक मंथन हो रहा है। सो फेस्टिवल्स आर आल्सो रिलेटेड ऑलवेज विद एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स एसोसिएटेड विद एस्ट्रोनॉमी, मतलब तिथि, फेजेस ऑफ द मून, सीजन्स, उत्तरायण दक्षिणायण, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तारे कहाँ पे हैं। जैसे कुंभ मेला विल बी एसोसिएटेड विद द एक्वेरियस कॉन्स्टिलेशन। तो स्टार्स, प्लैनेट, सीजन्स, मून, मूवमेंट ऑफ द सन, ऑल ऑफ दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फेस्टिवल्स। इसलिए फेस्टिवल्स के डेट बदलते रहते हैं लूनर कैलेंडर के हिसाब से। सोलर कैलेंडर के कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जैसे मकर संक्रांति, वो हमेशा एवरी ईयर January 14th को ही आएगा बिकॉज इट्स अ सोलर फेस्टिवल। लेकिन दिवाली दिन विल कीप शिफ्टिंग बिकॉज इट इज अ लूनर फेस्टिवल। तो व्हेनेवर यू डिस्कस फेस्टिवल्स, रिमेंबर टू लुक एट द कैलेंडर। इट इज अ ग्रेट वे टू एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन कैलेंडर, अपने दोस्तों के साथ, कि नेचर में क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग टू द सन, व्हाट इज हैपनिंग टू द मून, व्हाट इज हैपनिंग टू द स्टार्स। आर फेस्टिवल्स टीच अस अबाउट एस्ट्रोनॉमी। तो अगर स्कूल में नहीं पढ़े हो तो एटलीस्ट फेस्टिवल के टाइम पे तो सीखो। एंड दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू मस्ट grab from the Devdutt Patnaik show on Mirchi, share it with your friends, show off with your friends and encourage them to listen to the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
2: Devdutt on Radio Mirchi,
3: the Devdutt Patnaik show.
4: Kiski hai Diwali, Ram ki, Krishna ki ya Lakshmi ki, kyun hai controversy, batayenge Devdutt. Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं। भारत उत्सवों का देश है। वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स, वेदर इट इज हिंदू फेस्टिवल्स, बुद्धिस्ट फेस्टिवल, जैन फेस्टिवल, क्रिश्चियन फेस्टिवल, सिख फेस्टिवल्स, मुस्लिम फेस्टिवल्स, सेक्युलर फेस्टिवल्स, एथियस्ट फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल, हमको बहाना चाहिए फॉर पार्टिंग। और फेस्टिवल्स हमारा सांस्कृतिक पार्टी होता है। बट यू नो nowadays of course सबको कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है, सो नाउ देर आर कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट ये फेस्टिवल किसके लिए मनाया जाता है। सो आई ऑलवेज गेट दिस क्वेश्चन। दिवाली के टाइम में एक स्टोरी है। अगर आप बोलो दिवाली हम क्यों मनाते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, तो लोग कहेंगे कि लक्ष्मी के लिए हम मनाते हैं दिवाली, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन होता है दिवाली के दिन पे, एंड लक्ष्मी आ रही है इसलिए हम दीप जलाते हैं ताकि वो हमारे घर आए। लिए लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये राम जी ने अयोध्या आए थे इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ राम, इट इज नथिंग टू डू विद लक्ष्मी, और क्योंकि राम आ रहे हैं उनके साथ लक्ष्मी आ रही है। तो राम भक्त लोगों के वो बोलेंगे अलग आइडिया, जो लक्ष्मी भक्त हैं, जो वणिक समाज है, द ट्रेडर्स विल से नहीं नहीं लक्ष्मी की पूजा है। और एक ग्रुप आ जाता है श्री कृष्ण वाले, बोलेंगे कि नहीं नहीं यहाँ नरक चतुर्दशी होता है तो नरकासुर को श्री कृष्ण ने वध किया था इसलिए हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो सच क्या है बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बलि प्रतिपाद होता है, मतलब यहाँ पे ऑन दिस डे वामन ने बाली को जमीन पाताल लोक में भेज दिया था, तो मे बी दैट इज द रियल स्टोरी। तो इतने स्टोरीज में भी मेरा ये विश्वास है कि दिवाली फेस्टिवल सबको इतना पसंद है तो अपने फेवरेट गॉड की स्टोरी उन्होंने थोप दी, एंड वी ऑल बिलीव इट। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? जितने स्टोरीज उतना मजा। व्हाई डू वी वांट एक ही स्टोरी होना चाहिए? हमारा देश, वी आर अ डाइवर्स कंट्री, विभिन्नवाद वाला देश है। तो जिसे राम की स्टोरी सुनना है उन्हें राम की स्टोरी सुनने दीजिए, जिनको कृष्ण की स्टोरी सुनना है उन्हें कृष्ण की स्टोरी सुनना है, जिनको विष्णु की स्टोरी सुनना है वो विष्णु के बारे में सुनेंगे, जिसको लक्ष्मी के बारे में सुनना है वो लक्ष्मी के बारे में सुनेंगे। भाई बहन कहेंगे कि नहीं भाई दूज, दिवाली इज ओनली अबाउट भाई दूज। सो यू नो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट अ फेस्टिवल, एंड आई थिंक वी शुड स्टे अवे फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्सीज, वी शुड एंजॉय द स्टोरीज, फोकस ऑन द पॉजिटिव, स्टे अवे फ्रॉम दीज नेगेटिव। फेस्टिवल इज अबाउट पॉजिटिव एनर्जी, मांगल्य, घर में शुभ आना चाहिए, लाभ आना चाहिए। दीज आर द आइडियाज दैट वी विल डिस्कस ऑन द देवदत्त पटनायक शो। वी कीप टेलिंग यू स्टोरीज हमारे संस्कृति के बारे में, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर कल्चर, सो दैट यू कैन शो ऑफ विद योर फ्रेंड्स अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट इंडियन कल्चर। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पिक अप द फोन एंड आस्क। मैं आपके क्वेश्चंस के लिए वेट कर रहा हूं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। सो आई एम वेटिंग।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: दिवाली पर पटाखे जलाना सही या गलत, बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो,
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे, सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान, पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi.
3: Hi, मेरा नाम भास्कर है and I'm a huge fan of yours.
0: Thank you so much.
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: जी,
3: तो हनुमान जी की जाति को लेके कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे, जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस जाती है, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माय सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। शो अभी खत्म होने वाला है और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज यू नो अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी की वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते हैं। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi devdutt onmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show. The views expressed in the Devdutt Patnaik Show are the hosts alone, not the channels.

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Why is Bollywood not making us curious often enough? यार देखो ट्रेलर आता है और दो मिनट में लगता है कि हमें तो सब कुछ समझ आ गया है, फॉर्मूला सेम है, एक्शन सेम है, कॉमेडी सेम है, बस एक्टर्स नए हैं। लेकिन पिछले हफ्ते कुछ फिल्मों ने वाकई क्यूरियोसिटी जगाई है। हैवान ने कहा अब किलर अक्षय एक ब्लाइंड सैफ एंड प्रियदर्शन। टॉक्सिक ने कहा या तो ब्रिलियंटली गुड या तो टेरिफाइंगली बैड। और आवारापन 2 ने ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी यादों को दोबारा जिंदा कर दिया। शायद लोगों को अब बड़ी फिल्में नहीं, ज्यादा सरप्राइजिंग फिल्में चाहिए, क्योंकि थिएटर तक स्टार नहीं दोस्त, क्यूरियोसिटी खींच के लेके आती है। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज अ मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक काउंटडाउन, जहां पे म्यूजिक से बड़ी होती हैं बातें। एंड स्टार्टिंग ऑफ नंबर 20 पर है कॉकटेल 2 का ये गाना, सॉन्ग बाय द किंग अरिजीत सिंह, ये है तुझको। नंबर

तुझको के बाद नंबर 19 पर है एक ब्रांड न्यू एंट्री फ्रॉम राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है। अमित त्रिवेदी का ये गाना है कॉल्ड रंग बरसे, नो कनेक्शन टू दी ओल्ड अमिताभ बच्चन क्लासिक। इसे गाया है राघव चैतन्य और शिल्पा राव ने एंड अल्फाज हैं कुमार भाई के। एक बहुत ही अच्छा गाना जो एक ऑर्डिनरी फिल्म से कई ज्यादा अच्छी फिल्में होना डिजर्व करता था। नंबर 19।

जाइए सजना एंड धुरंधर इंडिया और पाकिस्तान को आज के नजरिए से देखती है, लेकिन आजादी के इस हफ्ते हम 80 साल पीछे जा रहे हैं, पार्टीशन तक, बंटवारे तक। अजीब बात है ना, 80 साल हो गए लेकिन हम अब भी उसी कहानी पर फिल्में बना रहे हैं। ट्रेन्स, सरहदें, बिछड़ते परिवार, छूटते हुए घर और वो लोग जिन्होंने एक मुल्क को पीछे छोड़कर दूसरे मुल्क में जिंदगी शुरू की। सब कह चुके हैं, सब दिखा चुके हैं, तो फिर अब नया क्या होगा। मेरे लिए बंटवारे पर फिल्म बनाने का असली चैलेंज यही है। इतिहास ने तो कहानी लिख दी है, अब सिनेमा को नजरिया ढूंढना है, क्योंकि ऑडियंस को दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं है कि बंटवारे ने क्या छीना। हमें ये देखना है कि उसके बाद लोगों ने क्या बनाया। थिएटर्स में इस हफ्ते पार्टीशन पर एक और फिल्म आ रही है, जिसे बनाया है राजकुमार संतोषी ने एंड इट स्टार्स सनी देओल एंड इसे प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने। देखना यह होगा कि 80 साल बाद ये जो नया इंडिया है, क्या बंटवारे की उस कहानी को उतना ही प्यार देगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की जिसमें बंटवारे को दिखाया है, तो एक फिल्म मुझे और याद आती है जहां पे एक ऐसा बच्चा जिसने अपना घर खोया, अपने परिवार को खोया और फिर दुनिया को अपना नाम याद करवा दिया, एक रेफ्यूजी जो इंडिया का एक महान एथलीट बना, मिल्खा सिंह। उनकी जिंदगी पर आधारित ये कहानी भाग मिल्खा भाग और उसका सबसे पावरफुल गाना संग बाय सिद्धार्थ महादेवन, संगीत शंकर एहसान लॉय का और लिखा है प्रसून जोशी ने। ये है जिंदा। Pick of the week.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 17.

16. कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: इस कमीना को नए जमाने में दोबारा सुनते हुए मुझे एक सवाल याद आ गया। हम पुराने गाने इतने सालों तक अपने पास आखिर क्यों रखते हैं? शायद इसलिए क्योंकि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी उम्र का साउंड ट्रैक होते हैं। और इमरान हाशमी के साथ तो ये बात और भी सच हो जाती है। थिंक ऑफ हिज डिस्कोग्राफी, तेरा मेरा रिश्ता, तो फिर आओ, फिर मोहब्बत, वो लम्हे वो बातें, जरा सा दिल इबादत। MP3 से iPod, iPod से फोन, फोन से स्ट्रीमिंग, फॉर्मेट बदल गया लेकिन गाने नहीं। और अब आवारापन 19 साल बाद उसी दुनिया का एक नया चैप्टर लेके आ रहा है, तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज। लेकिन मैंने इमरान से एक सवाल पूछा, हम तो आज भी उनके गाने लूप पर सुनते हैं, लेकिन क्या वो अपने गाने खुद सुनते हैं?
1: I don't like constantly hear my songs. Like Awarapan, I've heard the songs after almost 18 years. जब मैं फिल्म कर रहा था, तो I revisited the songs, I saw the film. So the thing is with actors, we hear it hundreds of times. So we are, our thing is something else only. We have heard it so much that we've consumed it so much that we kind of detached from it also. Although they are beautiful songs, but जब मैं दोबारा सुनता हूँ, it's just this nostalgic experience that you have. But I think एक जो एक intuitiveness होती है, अगर आपने गाना एक बार सुना and you have this reaction where you want to either hum it or you want to hear it again and again, वो एक तरह से मेरे लिए एक I guess a litmus test होता है whenever we pick up songs for my films. And उसकी melody बहुत simple होनी चाहिए and ज़ुबान पे चढ़नी चाहिए।
0: इमरान का जवाब मुझे बहुत interesting लगा, क्योंकि हम जिन गानों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, एक एक्टर के लिए तो वो अक्सर सिर्फ एक मेमोरी बन के रह जाती हैं। लेकिन जैसा इमरान ने कहा, उनका लिटमस टेस्ट काफी सिंपल है। क्या मेलोडी सुनते ही क्या आपका दिल करता है उसे गाने का? 19 साल बाद तेरा मेरा रिश्ता अब भी वही कर रहा है। मिर्ची टॉप 20 पर डेब्यूइंग ऑन नंबर 15, दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस आइकॉनिक सॉन्ग।

कुछ गाने आपको मदहोश कर देते हैं और कुछ सवाल आपको होश में ले आते हैं। और आजादी के इस हफ्ते मेरे जहन में एक सवाल है, 80 साल बाद इंडिया हमारे लिए आखिर क्या है? क्योंकि 80 साल बहुत होते हैं। हम वो इंडिया नहीं हैं जो 1947 में आजाद हुए थे। आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अपना स्पेस प्रोग्राम है, दुनिया भर का पैसा इंडिया के कैपिटल मार्केट्स में आ रहा है। हम सिर्फ बढ़ नहीं रहे, हम दुनिया के सामने अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन फिर इसी इंडिया में ट्रैफिक आपका आधा दिन खा जाता है, इनइक्वालिटी आंखों के सामने दिखती है, करप्शन से रोज सामना होता है, हर बात पर बहस होती है। तो कभी कभी इस पूरे सर्कस को देखकर दिल से एक आवाज निकलती है, यार हम आखिर कब बदलेंगे? शायद इसी बेचैनी से हमें अपना जवाब मिल जाता है। इंडिया बदल तो रहा है, बस हम उसे और तेज बदलते देखना चाहते हैं। और वो इम्पेशंस, वो एम्बिशन, वही तो है नए इंडिया की आवाज। नंबर 13 पर कहर मचा रहे हैं गुरु रंधावा इन धमाल, लेकिन नंबर 12 पर वो फिल्म जो एक नया इंडिया सामने लेके आई, धुरंधर का ये गाना आरी आरी। नंबर 12।

रीमिक्स बनाने का एक फॉर्मूला सा बन गया है। पुराना गाना उठाओ, नए बीट डालो और गाना पक्का हिट है। लेकिन अगर इतना ही सिंपल होता तो हर रीमिक्स चार्ट बस्टर होता। सच ये है, कुछ रीमिक्स कल्ट बन जाते हैं और कुछ बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इस हफ्ते नंबर 11 पर द हाईएस्ट गेनर, वो गाना है जिसकी मैंने काफी क्रिटिसिज्म की है एंड उसके बावजूद इट इज द हाईएस्ट गेनर। चार पोजीशंस अप फ्रॉम नंबर 15 टू नंबर 11 दिस वीक इज आंखों से तूने ये क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है। देखो चार्ट्स तो ये कह रहे हैं कि लोगों को ये वर्जन काफी पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे अब भी नहीं आता। मेरी प्रॉब्लम रिक्रिएशन से नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि सॉन्ग की यार आइडेंटिटी बदल चुकी है। गुलाम में जब गाना आया था तो वो एक सॉफ्ट रोमांटिक कॉम्पोजिशन थी, उसकी खूबसूरती उसके ठहरे हुए इमोशंस थे। आप उसे रिक्रिएट कीजिए, अरेंजमेंट बदलिए, साउंड कंटेम्प्रेरी कीजिए, लेकिन उसे 2026 का एक डांस फ्लोर बैंगर मत बनाइए। आप उसकी रूह को ही बदल रहे हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल एक फिल्म आई थी कार्तिक आर्यन और अरण्या पांडे की कॉल्ड तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, उसमें गाना था सात समंदर पार। इसके साथ भी यही एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक आइकॉनिक 90s डांस नंबर जिसे नए जमाने के हिसाब से रीशेप करने की कोशिश की गई। रिजल्ट, वेल इट स्पेक्टेक्युलरली फेल्ड टू द पॉइंट कि वो गाना मिर्ची टॉप 20 पर फीचर तक नहीं हुआ। See

0: Now you understand. जब एक डांस नंबर को आप रोमांटिक गाना बना देते हो, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस गाने पे नाचूं या किसी से प्यार करूं। So what I'm saying is, गाना रिक्रिएट करो, उसकी आइडेंटिटी को नहीं। और इसका प्रूफ देने को तैयार हूं मैं। एक गाना था बार बार देखो मैं, विच वॉज अ रिक्रिएशन ऑफ अ वेरी पॉपुलर 90s सॉन्ग संग बाय अमर अर्शी। उस गाने में प्रोडक्शन बदली, साउंड बदला, लेकिन उसकी असली जान, वो डांस फ्लोर वाली जान, वो नहीं बदली। एंड दैट्स व्हाई द सॉन्ग स्टिल बिकेम अ चार्ट बस्टर। काला चश्मा द न्यू वर्जन इज माय रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

Mirchi, it's hot. Only on Mirchi, it's hot. Number 10.

कभी सोचा है कि इंडिपेंडेंस डे आते ही हमारे पास कुछ गाने ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जय हो संदेशे आते हैं, ए वतन ये जो देश है तेरा, और आने भी चाहिए। लेकिन अगर पेट्रियोटिज्म का मतलब सिर्फ देश की तारीफ करना नहीं है, तो शायद कुछ और गाने भी हैं जो इस मुल्क की रूह को, उसकी आत्मा को समझते हैं। ये देश से प्यार का गाना नहीं है, ये उस बेचैनी का गाना है जो कहता है जो गलत है उसे बदलना है, और फिर आता है साड़ा हक।

एक आवाज जो कहती है कि मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। लेकिन इस इंडिया को सिर्फ हक नहीं चाहिए, उसे आजादियां चाहिए।

कभी घर से, कभी डर से, कभी उन एक्सपेक्टेशन से जो हमारे लिए किसी और ने लिख दी। और फिर जब सब कुछ मुश्किल लगे तो आशाएं हैं।

0: क्योंकि शायद इस देश की सबसे बड़ी आदत ही यही है, उम्मीद छोड़ने से इनकार, और फिर वो आवाज जो उम्मीद से एक कदम आगे जाती है। ये गाने देश का नाम नहीं लेते, लेकिन शायद देश हम में जो जगाता है उसका नाम जरूर लेते हैं। बेचैनी, हक, आजादी और उम्मीद, ये भी तो इंडिया है। इस काउंटडाउन पर नंबर 9 पर है धमाल का गाना साड़ी, लेकिन अभी के लिए चलाऊंगा गाना नंबर 8 आवारापन 2 से, सुबोध शर्मा की आवाज में। यह है बेजनून।
1: नंबर 8।
2: फिर

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: तुम्हें बंधु की वो केयर फ्री सी दुनिया जहां दोस्त हैं, रोमांस है और लाइफ थोड़ी सिंपल लगती है। करण जौहर ने अपनी पहली दो फिल्म्स में हमें इसी दुनिया का सपना दिखाया था। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, बड़े घर, बड़े इमोशंस, बड़े गाने। और फिर 2006 में करण ने खुद अपने बनाए हुए ड्रीम वर्ल्ड में एक दरवाजा खोला, कभी अलविदा ना कहना। एक ऐसी कहानी जहां शादी है, प्यार है, लेकिन प्यार के बावजूद लोग खुश नहीं है। इंडिया ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। किसी ने कहा इट वाज अ ब्रेव फिल्म, किसी ने कहा ये तो एंटी संस्कारी है। करण खुद मानते हैं कि फिल्म थोड़ी ओवरब्लोन थी, लेकिन उसका दिल सही जगह पर था। शायद 20 साल बाद हम समझने लगे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। मेरा एक सवाल जरूर है, करण ने इनफिडेलिटी को जज नहीं किया, लेकिन क्या उन्होंने उसे पूरी तरह समझने की कोशिश की? क्योंकि वो कहानी के बीच में नहीं खड़े थे, वो बस दूर से देख रहे थे। लेकिन एक बात तय है, कभी अलविदा ना कहना के बाद करण जौहर ने कभी पहले जैसी फिल्में नहीं बनाई। वो उस फिल्म से पूरी तरह उभर नहीं पाए। 20 साल बाद उसी फिल्म का एक गाना जो शायद वक्त से कभी बाहर ही नहीं हुआ, तुम ही देखो ना। सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाज में, दिस इज माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

तबाही टॉप फाइव में आ गया है और उसी वक्त टॉक्सिक के ट्रेलर ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, भाई ये फिल्म है क्या? देखो मैंने ट्रेलर देखा और मुझे एक चीज समझ आ गई, ये फिल्म या तो ब्रिलियंटली गुड होगी या टेरिफाइंगली बैड होगी, बीच का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। कहानी है गोवा की, लेकिन वो गोवा नहीं जो हम पोस्ट कार्ड्स में देखते हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप पे चले जाते हैं। ये 1960s के गोवा की कहानी है। इंडिया आजाद हो चुका था लेकिन गोवा अभी भी पोर्चुगीज के कंट्रोल में था, और इसी दुनिया में पावर है, ग्रीड है, गैंग्स हैं, और वायलेंस इतनी कि कभी कभी लगता है कि स्क्रीन भी खून से भीग जाएगा। और जो इस फिल्म में औरतें हैं, द वेमेन, जी हाँ, कैरेक्टर्स पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह फ्रेम किया गया है, जिस तरह सेक्सुअलिटी और वायलेंस को उनके साथ मिक्स किया गया है, वो एम्पावरमेंट और ऑब्जेक्टिफिकेशन के बीच की जो लाइन है उसे बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से ब्लर करती है। शायद इसलिए टॉक्सिक का ट्रेलर मुझे एक्साइट करने से ज्यादा इंट्रीग कर रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना एक्सट्रीम होने की परमिशन खुद को बहुत कम लोग देते हैं। अब सवाल यह है कि ये मैडनेस सिनेमा बनेगा या सिर्फ मैडनेस ही रह जाएगा, ये तब पता चलेगा जब फिल्म बहुत जल्द थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टॉक्सिक को हम साइड में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे टू गुड ओल्ड फैशन बॉलीवुड। ये कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का गाना ऊंचा लंबा कद, व्हिच इज ऑन नंबर 4 दिस वीक। नंबर 4।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3।

यार इमरान हाशमी को भी बॉलीवुड ने एक अजीब सा गिफ्ट दिया है। वो हर बार हीरो बन के नहीं आए, कभी वो लवर बने, कभी गैंगस्टर, कभी एक जर्नलिस्ट, कभी वो आदमी जो खुद से ही हार रहा था। लेकिन हर बार उनके पीछे एक ऐसा गाना जरूर था जो पिक्चर से बाहर निकल गया।

जरा सा जन्नत से निकला था, लेकिन कितने लोगों की अपनी लव स्टोरी का बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया। किसी को शायद वो पहली बार किसी के लिए फील करना याद आया, किसी को वो रात याद आई जब फोन हाथ में था और मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं थी।

0: फिर आया बीते लम्हे और जिस सिन से गाना था द ट्रेन, उसकी कहानी पीछे रह गई, लेकिन हार्ट ब्रेक की कहानी में ये गाना आज भी फ्रंट रो में बैठा है।
1: बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं।
0: और फिर बोल दो ना जरा, वो तो जैसे उन लोगों का गाना बन गया जिनके पास कहने को बहुत कुछ है, बस कह नहीं पाते। शायद इसलिए इमरान की सबसे बड़ी लेगेसी उनका बॉक्स ऑफिस नहीं रही है। इमरान की फिल्मों ने हमें अपने इमोशंस के लिए गाने दिए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट आवारापन, उस लेगेसी में एक और खूबसूरत एडिशन। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदल रही, 37 हफ्तों से गाना इस काउंटडाउन पे मौजूद है एंड इट स्टिल इज नंबर 1 ऑन द मिर्ची टॉप 20, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द काउंटडाउन वंस अगेन इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर बाय अरिजीत सिंह।
2: नंबर 1।

0: आज का एपिसोड सिर्फ काउंटडाउन नहीं था, एक बच्चे की कहानी थी जिसने अपना घर खोया और एक देश को नाम दिया। एक सवाल था कि 80 साल बाद हम क्या बन गए हैं, और कुछ गाने थे जो आजादी को सल्यूट नहीं करते, उसका मतलब ढूंढते हैं। शायद यही है इस मुल्क का असली गाना, सवाल, बेचैनी और थोड़ी सी उम्मीद। और इन सबके बीच नंबर वन पर गहरा हुआ इटर्नल रोमांस। कुछ गाने चार्ट्स पर ऊपर रहते हैं और कुछ वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। ये था आपका मिर्ची टॉप 20 एंड मैं आपसे जल्द मिलूंगा नई स्टोरीज और नए गानों के साथ। तब तक गाने सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

कर पाता है, ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना। तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

मिर्ची, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

Mirchi. It's hot. Mirchi, it's hot.

लगाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Avicii. It's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, बजा।

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

0: Energy. It's hot.
1: Let's go crazy.

Mirchi. It's hot. Mirchi, it's hot.

मिर्ची इट्स हॉट।

It's hot. Mirchi. It's hot. Mirchi, it's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। This is the Gaana Indie Top 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गानों में दो नई एंट्रीज हैं। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंट डाउन की गाना नंबर 10 के साथ। गाने का नाम है मूव बॉडी, ज़ारा खान स्केल्स का गाना। चार हफ्तों से है ये बरकरार। पिछले हफ्ते से तीन पोजिशन नीचे ड्रॉप होके मूव बॉडी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद हर्ष नुसी की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है साड़ी सुन। आठ हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके साड़ी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द होल काउंटडाउन एंड अ कैसेट क्लासिक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय। नंबर 10।

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, सुनेगी कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सारे कॉम्बिनेशंस की वजह से 8 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ अभी के अभी, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक ऐसे आर्टिस्ट की आवाज है जिसके साथ एक पूरी जनरेशन ने प्यार करना सीखा है। सोच के देखो, कॉलेज का पहला क्रश या वो एक तरफा प्यार, गाड़ी में बैठे रात की ड्राइव्स, एक पूरी जनरेशन को इन्होंने प्यार करना सिखाया। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली शान। मैं शान का नाम भी ऐसे मुस्कुराए बिना नहीं ले पाती हूँ, बिकॉज उनकी गानों में, उनकी आवाज में हमें उनकी मुस्कुराहट सुनाई देती है। पूरे 3 दशक हो चुके हैं एंड शान इज स्टिल गिविंग अस द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम। चाहे वो फिल्मों के गाने हो या नॉन फिल्म गाने हो, चांद सिफारिश हो या हे शोना, अलग अलग प्यार के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं शान की आवाज रही है। नाउ काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स अ नया नवेला गाना, उसमें उनके साथ हैं दीदार कौर, एंड दोनों का पहला कोलैबोरेशन है। उदीपन शर्मा का म्यूजिक है, श्लोक लाख के लिरिक्स, एंड इस गाने में वो शान के प्यार वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, दीदार कौर एंड शान की आवाज में। गाने का नाम है दिलदारा, अ नई नवेली एंट्री। इस गाने ने डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3
0: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची

0: लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।
1: गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना।

0: संजू राठौड़ की आवाज, गाने का नाम है बैंगल्स। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले मेरा फेवरेट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन, फरक की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम तारे, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। संजू राठौड़ की आवाज ऐसी है, सुनते ही पता चल जाता है इट्स हिज सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे एक नई नवेली एंट्री हुई, शान कैन दीदार कौर की आवाज में हमने सुना दिलदारा ऑन गाना नंबर 8। इनफैक्ट शान की आवाज भी वही है, पहले नोट से यू नो इट्स हिम। चाहे वो सिंगर की आवाज हो या कुछ गानों का इंट्रो म्यूजिक, वो गाने जो एकदम याद आ जाते हैं ना, दे गॉट दैट स्टिकीनेस फैक्टर। आज के शो में जो मैं कैसेट क्लासिक में आपके लिए गाना बजाने वाली हूँ, दैट इज आवर 90s एंड 2000s का आइकॉनिक पिक, उस गाने का मैं इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। @RJKanika पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने का है।

0: एट आरजे करंग ऑन इंस्टाग्राम पर बताओ मुझे गाना कौन सा है। ये पूरा गाना शो पर आगे हम आपके लिए प्ले करेंगे। बट टॉकिंग अबाउट टेक अवे फैक्टर्स, ऐसी आवाज, ऐसा म्यूजिक जिसे सुनते ही हम आर्टिस्ट को एकदम रिकग्नाइज कर जाते हैं, उसमें से एक आवाज है रेखा भारद्वाज की। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो उन्हीं का गाना है। शायद आप गाना पहली बार सुने लेकिन सुनकर लगेगा कि इस गाने को तो आप बरसों से जानते हैं। दैट मैजिक इज रेखा भारद्वाज। ये गाना मुसाफिर कैफे नाम की सीरीज का है, जो एक नेटफ्लिक्स सीरीज है, कंटेम्प्रेरी लव स्टोरी, यंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम उसके बारे में है, लेकिन प्यार को डेफिनेशन दे दिया रेखा भारद्वाज की आवाज। क्योंकि रेखा भारद्वाज की आवाज में प्यार गहरा लगता है, सदियों पुराना लगता है। उनकी आवाज में वो तजुर्बा है, एक याद है जिसको सुन के लगता है कि ब्रो ये दर्द तो पहले भी झेला है। एंड मुसाफिर कैफे जो शो है वो एक बुक पे बेस्ड है, सो ऑलरेडी उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। द सीरीज इज ऑल अबाउट लव। ये जो गाना है ये भी एक नई नवेली एंट्री है। इस गाने का जो दिल है ना वो बहुत खूबसूरत है और बहुत दुखी भी है। द सॉन्ग इज अबाउट राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, बट रेखा भारद्वाज की आवाज में इट विल ऑल साउंड मैजिकल। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। नई नवेली एंट्री ऑन द काउंट डाउन, राघव कौशिक एंड रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है दरमिया। इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 5। यू ऑल लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 5।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची।

0: अनीश सरकार हृदय की आवाज में गाने का नाम है उड़ी उड़ी। 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इंडिपेंडेंट म्यूजिक बेसिकली एक आर्टिस्ट को वो मौका देता है कि तुम जो फील करते हो, जो महसूस करते हो, जो कहानी बताना चाहते हो अपने म्यूजिक के जरिए वो बताओ। एंड स्पेस में कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ट्रूली म्यूजिक में मीनिंग ढूंढा है, एंड वन ऑफ दोज आर्टिस्ट इज इंडियन ओशन, लेजेंडरी आइकॉनिक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। व्हाट अ बैंड, आई स्वेयर हर किसी को इंडियन ओशन का लाइव शो देखना चाहिए, आपको गूज बम्स आ जाएंगे। दे ट्रूली डिफाइन द इंडिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट म्यूजिक बिकॉज वो कल्चरल पे कॉमेंट्री करते हैं, अपने ओपिनियन देने से कतराते नहीं है। उनका म्यूजिक कहीं ना कहीं हमें इंटरनली रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर कर देता है। आज हम इंडियन ओशन के ये गाने को स्पॉटलाइट देने वाले हैं। ये ऐसा गाना है जो आपको रुकने पे मजबूर कर देता है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी इंसान से मिलते हैं वे आर वेरी क्विक टू जज, नाम से कोई ना कोई लेबल लगा देते हैं कि ये इस तरफ का है, वो उस तरफ का है, ये अपना है, वो पराया है। एंड एक बार हमने ये करना शुरू कर दिया ना बॉस, हमको सिर्फ वही दिखता है। और ये गाना जो है वहीं पे हमारी नब्स पकड़ लेता है कि ये क्या लगा रखा है उस नाम के पीछे, उस लेबल के नीचे। सामने वाला बंदा बिल्कुल मेरे और तुम्हारे जैसा ही है। That's the beauty of Indian Ocean. उनके गाने आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, उनके गाने सवाल भी उठाते हैं और आईना भी दिखाते हैं। That's why their voice matters and they are truly one of those artists जो music and meaning को साथ में लेके चलते हैं। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। जिस गाने की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है रुक जा रे बंदे, तो थोड़ा रुक कर इस गाने को सुनो, इंडियन ओशन का रुक जा रे बंदे ऑन आर स्पॉटलाइट दिस वीक। बंदी का नाम है RJ कनिका। एंजॉय।

इस गाने में ना वो बात है कि आसपास का सारा शोर एकदम के लिए रुक जाता है और आप इस गाने को सुनने के लिए, महसूस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इंडियन ओशन द बैंड का दैट वॉज बंदे ऑन आर स्पेशल स्पॉटलाइट दिस वीक। @RJKanika और इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी ऐसा गाना जो आपको रुकने पर मजबूर कर देता है मुझे उस गाने के बारे में बताओ, एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। नूर खान मधुर एक्सो का आरजू इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। उसके बाद मिट्टा रॉयर की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। 20 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार शीशा इज ऑन गाना नंबर 2। यू ऑल लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 2।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची पर शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का काउंटडाउन, जिसमें दो नई एंट्रीज हैं। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

एंड जो गाना हम आज फीचर करने वाले हैं इज गाने का नाम है तन्हा दिल इन द वॉइस ऑफ वन एंड ओनली शान. इट्स ट्रू दैट ये गाना एक पूरी जेनरेशन का एंथम था. साल 2000 मिलेनियम नया नया शुरू हुआ था, नई जॉब्स क्रिएट हो रही थी, नए कॉलेजेस आ रहे थे एंड पहली बार बहुत सारे नौजवान अपने घर छोड़ के निकल रहे थे, कोई नए कॉलेज के लिए, नए शहर के लिए, पहली नौकरी, नया फोन जिस पे एसटीडी के पैसे बचाने के लिए मिस कॉल दिए जाते थे. उस पूरे दौर का जो दिल था ना वो कहीं ना कहीं इस गाने में है, तन्हा दिल. क्योंकि ये तन्हाई किसी ब्रेकअप वाली तन्हाई के बारे में नहीं है, ये घर से दूर एक नए शहर में कमरे में कोई अकेला बैठा है, घर की याद, माँ के हाथ के खाने का स्वाद, वो बचपन का दोस्त जो सब पीछे छूट गया. पर दिस सॉन्ग कैप्चर्स अ यूनिवर्सल फीलिंग, राइट? तन्हा दिल तन्हा सफर. ना यूट्यूब था ना इंस्टाग्राम था, लेकिन ये गाना और बहुत सारी लैंग्वेजेस में अडैप्ट हुआ था एंड आज 2026 में भी ये फीलिंग इतनी रेलिवेंट है क्योंकि कोई ना कोई आज भी अपना घर छोड़ के एक नए शहर में है, थोड़ा लॉस्ट फील कर रहा है, मे बी अपनी फैमिली को मिस कर रहा है, बस कैसेट की जगह हाथ में फोन है बट फीलिंग तो वही वाली है. और शान की आवाज में दिस सॉन्ग कैप्चर्स इट ऑल, तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. कैसेट क्लासिक विद दिस वीक राम संपत की कॉम्पोजिशन, शान की आवाज, तन्हा दिल इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक. बंदी का नाम है आरजे कनिका. एंजॉय.

शान की आवाज, राम संपत की कॉम्पोजिशन, दैट वॉज तन्हा दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। गाना भले पुराना हो, फीलिंग वही है, चाहे आप घर से दूर हो या ना हो, ये गाना सबके लिए है। एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी 90s एंड 2000s का वो पॉप सॉन्ग जो आज भी आपको बहुत पसंद है, हमारे साथ शेयर करो। मैं और मेरा साउंड प्रोड्यूसर अश्काय, हम दोनों आपके कैसेट क्लासिक के रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, which is the numero uno song of the week, यानी इस हफ्ते का गाना नंबर एक। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बन जा रहे द आर्टिस्ट का गाना, उन्हीं की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैरन। दिस हरियाणवी पॉप सॉन्ग इज येट अगेन ऑन गाना नंबर एक। यू आर लिस्टिंग टू गाना इन द टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 1।

पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है।

Mitchie. It's hot.

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Why is Bollywood not making us curious often enough? यार देखो ट्रेलर आता है और दो मिनट में लगता है कि हमें तो सब कुछ समझ आ गया है, फॉर्मूला सेम है, एक्शन सेम है, कॉमेडी सेम है, बस एक्टर्स नए हैं। लेकिन पिछले हफ्ते कुछ फिल्मों ने वाकई क्यूरियोसिटी जगाई है। हैवान ने कहा अब किलर अक्षय, एक ब्लाइंड सैफ एंड प्रियदर्शन। टॉक्सिक ने कहा या तो ब्रिलियंटली गुड या तो टेरिफाइंगली बैड। और आवारापन 2 ने ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी यादों को दोबारा जिंदा कर दिया। शायद लोगों को अब बड़ी फिल्में नहीं, ज्यादा सरप्राइजिंग फिल्में चाहिए, क्योंकि थिएटर तक स्टार नहीं दोस्त, क्यूरियोसिटी खींच के लेके आती है। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक काउंटडाउन, जहां पे म्यूजिक से बड़ी होती हैं बातें। एंड स्टार्टिंग ऑफ नंबर 20 पर है कॉकटेल 2 का ये गाना, सॉन्ग बाय द किंग अरिजीत सिंह, ये है तुझको। नंबर

तुझको के बाद नंबर 19 पर है एक ब्रांड न्यू एंट्री फ्रॉम राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है। अमित त्रिवेदी का ये गाना है कॉल्ड रंग बरसे, नो कनेक्शन टू दी ओल्ड अमिताभ बच्चन क्लासिक। इसे गाया है राघव चैतन्य और शिल्पा राव ने एंड अल्फाज हैं कुमार भाई के। एक बहुत ही अच्छा गाना जो एक ऑर्डिनरी फिल्म से कई ज्यादा अच्छी फिल्में होना डिजर्व करता था। नंबर 19।

जाइए सजना एंड धुरंधर इंडिया और पाकिस्तान को आज के नजरिए से देखती है, लेकिन आजादी के इस हफ्ते हम 80 साल पीछे जा रहे हैं, पार्टीशन तक, बंटवारे तक। अजीब बात है ना, 80 साल हो गए लेकिन हम अब भी उसी कहानी पर फिल्में बना रहे हैं। ट्रेन्स, सरहदें, बिछड़ते परिवार, छूटते हुए घर और वो लोग जिन्होंने एक मुल्क को पीछे छोड़कर दूसरे मुल्क में जिंदगी शुरू की। सब कह चुके हैं, सब दिखा चुके हैं, तो फिर अब नया क्या होगा। मेरे लिए बंटवारे पर फिल्म बनाने का असली चैलेंज यही है। इतिहास ने तो कहानी लिख दी है, अब सिनेमा को नजरिया ढूंढना है, क्योंकि ऑडियंस को दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं है कि बंटवारे ने क्या छीना। हमें ये देखना है कि उसके बाद लोगों ने क्या बनाया। थिएटर्स में इस हफ्ते पार्टीशन पर एक और फिल्म आ रही है जिसे बनाया है राजकुमार संतोषी ने एंड इट स्टार्स सनी देओल एंड इसे प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने। देखना यह होगा कि 80 साल बाद ये जो नया इंडिया है क्या बंटवारे की उस कहानी को उतना ही प्यार देगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की जिसमें बंटवारे को दिखाया है, तो एक फिल्म मुझे और याद आती है जहां पे एक ऐसा बच्चा जिसने अपना घर खोया, अपने परिवार को खोया और फिर दुनिया को अपना नाम याद करवा दिया, एक रेफ्यूजी जो इंडिया का एक महान एथलीट बना, मिल्खा सिंह। उनकी जिंदगी पर आधारित ये कहानी भाग मिल्खा भाग और उसका सबसे पावरफुल गाना संग बाय सिद्धार्थ महादेवन, संगीत शंकर एहसान लॉय का और लिखा है प्रसून जोशी ने। ये है जिंदा।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 17.

16। कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: इस कमीना को नए जमाने में दोबारा सुनते हुए मुझे एक सवाल याद आ गया।
1: हम पुराने गाने इतने सालों तक अपने पास आखिर क्यों रखते हैं? शायद इसलिए क्योंकि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी उम्र का साउंड ट्रैक होते हैं। और इमरान हाशमी के साथ तो ये बात और भी सच हो जाती है। थिंक ऑफ हिज डिस्कोग्राफी, तेरा मेरा रिश्ता, तो फिर आओ, फिर मोहब्बत, वो लम्हे वो बातें, जरा सा दिल इबादत। MP3 से iPod, iPod से फोन, फोन से स्ट्रीमिंग, फॉर्मेट बदल गया लेकिन गाने नहीं। और अब आवारापन 19 साल बाद उसी दुनिया का एक नया चैप्टर लेके आ रहा है, तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज। लेकिन मैंने इमरान से एक सवाल पूछा, हम तो आज भी उनके गाने लूप पर सुनते हैं, लेकिन क्या वो अपने गाने खुद सुनते हैं?
2: I don't like constantly hear my songs. Like आवारापन, I've heard the songs after almost 18 years. जब मैं फिल्म कर रहा था, तो I revisited the songs, I saw the film. So the thing is with actors, we hear it hundreds of times. So we are, our thing is something else only. We have heard it so much that we've consumed it so much that we kind of detached from it also. Although they are beautiful songs, but जब मैं दोबारा सुनता हूँ, it's just this nostalgic experience that you have. But I think एक जो एक intuitiveness होती है, अगर आपने गाना एक बार सुना and you have this reaction where you want to either hum it or you want to hear it again and again, वो एक तरह से मेरे लिए एक I guess a litmus test होता है whenever we pick up songs for my films. And उसकी melody बहुत simple होनी चाहिए and ज़ुबान पे चढ़नी चाहिए।
0: इमरान का जवाब मुझे बहुत interesting लगा, क्योंकि हम जिन गानों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, एक एक्टर के लिए तो वो अक्सर सिर्फ एक मेमोरी बनके रह जाती हैं। लेकिन जैसा इमरान ने कहा, उनका लिटमस टेस्ट काफी सिंपल है। क्या मेलोडी सुनते ही क्या आपका दिल करता है उसे गाने का? 19 साल बाद तेरा मेरा रिश्ता अब भी वही कर रहा है। मिर्ची टॉप 20 पर डेब्यूइंग ऑन नंबर 15, दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस आइकॉनिक सॉन्ग।
3: Number 15.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 14

कुछ गाने आपको मदहोश कर देते हैं और कुछ सवाल आपको होश में ले आते हैं। और आजादी के इस हफ्ते मेरे जहन में एक सवाल है, 80 साल बाद इंडिया हमारे लिए आखिर क्या है? क्योंकि 80 साल बहुत होते हैं। हम वो इंडिया नहीं हैं जो 1947 में आजाद हुए थे। आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अपना स्पेस प्रोग्राम है, दुनिया भर का पैसा इंडिया के कैपिटल मार्केट्स में आ रहा है। हम सिर्फ बढ़ नहीं रहे, हम दुनिया के सामने अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन फिर इसी इंडिया में ट्रैफिक आपका आधा दिन खा जाता है, इनइक्वालिटी आंखों के सामने दिखती है, करप्शन से रोज सामना होता है, हर बात पर बहस होती है। कभी कभी इस पूरे सर्कस को देखकर दिल से एक आवाज निकलती है, यार हम आखिर कब बदलेंगे? शायद इसी बेचैनी से हमें अपना जवाब मिल जाता है। इंडिया बदल तो रहा है, बस हम उसे और तेज बदलते देखना चाहते हैं। और वो इम्पेशंस, वो एम्बिशन, वही तो है नए इंडिया की आवाज। नंबर 13 पर कहर मचा रहे हैं गुरु रंधावा इन धमाल, लेकिन नंबर 12 पर वो फिल्म जो एक नया इंडिया सामने लेके आई, धुरंधर का ये गाना आरी आरी। नंबर 12।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 11।

रीमिक्स बनाने का एक फॉर्मूला सा बन गया है। पुराना गाना उठाओ, नई बीट डालो और गाना पक्का हिट है। लेकिन अगर इतना ही सिंपल होता तो हर रीमिक्स चार्ट बस्टर होता। सच ये है, कुछ रीमिक्स कल्ट बन जाते हैं और कुछ बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इस हफ्ते नंबर 11 पर द हाईएस्ट गेनर, वो गाना है जिसकी मैंने काफी क्रिटिसिज्म की है एंड उसके बावजूद इट इज द हाईएस्ट गेनर। चार पोजीशंस अप फ्रॉम नंबर 15 टू नंबर 11 दिस वीक इज आंखों से तूने ये क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है। देखो चार्ट्स तो ये कह रहे हैं कि लोगों को ये वर्जन काफी पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे अब भी नहीं आता। और मेरी प्रॉब्लम रिक्रिएशन से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सॉन्ग की यार आइडेंटिटी बदल चुकी है। गुलाम में जब गाना आया था तो वो एक सॉफ्ट रोमांटिक कॉम्पोजिशन थी, उसकी खूबसूरती उसके ठहरे हुए इमोशंस थे। आप उसे रिक्रिएट कीजिए, अरेंजमेंट बदलिए, साउंड कंटेम्प्रेरी कीजिए, लेकिन उसे 2026 का एक डांस फ्लोर बैंगर मत बनाइए। आप उसकी रूह को ही बदल रहे हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल एक फिल्म आई थी कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की कॉल्ड तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, उसमें गाना था सात समंदर पार। इसके साथ भी यही एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक आइकॉनिक 90s डांस नंबर जिसे नए जमाने के हिसाब से रीशेप करने की कोशिश की गई। रिजल्ट, वेल इट स्पेक्टेक्युलरली फेल्ड टू द पॉइंट कि वो गाना मिर्ची टॉप 20 पर फीचर तक नहीं हुआ।

गया। Now you understand, जब एक डांस नंबर को आप रोमांटिक गाना बना देते हो, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस गाने पे नाचूं या किसी से प्यार करूं। So what I'm saying is, गाना रिक्रिएट करो, उसकी आइडेंटिटी को नहीं। और इसका प्रूफ देने को तैयार हूं मैं। एक गाना था बार बार देखो में, विच वॉज अ रिक्रिएशन ऑफ अ वेरी पॉपुलर 90s सॉन्ग संग बाय अमर अर्शी। उस गाने में प्रोडक्शन बदली, साउंड बदला, लेकिन उसकी असली जान, वो डांस फ्लोर वाली जान, वो नहीं बदली। एंड दैट्स व्हाई द सॉन्ग स्टिल बिकेम अ चार्ट बस्टर। काला चश्मा द न्यू वर्जन इज माय रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक। टॉप 20 रिवाइंड।

Mirchi. It's hot.